0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और बलबीर की आवाज़ों में फिल्म मेरे हमसफ़र का ये गीत। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: इन संदेशों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुलदस्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब सुनवाते हैं फिल्म त्रिदेव का ये गीत, आवाज अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की, बोल आनंद बख्शी के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म त्रिदेव का ये गीत अमित कुमार, सपना मुखर्जी और साथियों की आवाज़ों में। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में सुनवाते हैं ये पहला गीत बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म है वादा, बोल समीर के और संगीत सतीश कौशिक का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म यादों की बारात का ये गाना, आवाज़ आशा भोसले और किशोर कुमार की। और अब सुनवा रहे हैं फिल्म विरासत का ये गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म विरासत का ये गीत, आवाज़ उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, क्षमा कीजिएगा, कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब सुनवाते हैं विनोद राठौर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म याराना का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म यस बॉस का ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज सरायकेला खरसावा में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नवस्थापित कैथ लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होने से रोगों के उपचार के लिए लोगों को राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें अपने राज्य में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुआ गोलीकांड के शहीदों समेत झारखंड आंदोलन के सभी वीरों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड की धरती हमेशा से जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की धरती रही है। श्री सोरेन ने कहा कि वीरों का सपना और उनके संघर्ष की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। छात्रों के मुद्दे पर भाजपा ने आज से 4 दिवसीय राज्यव्यापी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव का कार्यक्रम शुरू किया। पहले दिन रांची और हजारीबाग समेत 5 जिलों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार को छात्रों के मुद्दे पर घेरा। हजारीबाग में प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई से जांच की मांग की। पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर थाना के प्रवेश द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठ गए हैं। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को आज गिरिडीह समाहरणालय सभागार में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक विमल कुमार समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सेवा दे रहे पारा मेडिकल छात्रों ने बकाए मानदेय की भुगतान की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि अस्पताल के अलग अलग विभागों में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन उनके मानदेय नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम सात रंग।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱢᱨᱟᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ
1: ᱥᱟᱵᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱥᱩᱨᱚᱠᱥᱟ ಅᱴᱚᱞ ᱯᱮᱱᱥᱚᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱢᱳᱫᱤ ᱡᱤ ᱠᱟ ᱥᱚᱝᱠᱚᱞᱯ
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 7 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
4: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
3: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नीतो दो बिलती चा सीधी कते मन बैद्यनाथ हंसदा और मन बड़ा हंसदा तिकना गपल मरा बोन आंजोमा।
6: हाँ गोमके जोहार गया।
7: जोहार।
6: तो अभी ना परिचय कटिंग ले जाओ।
7: अलियाँ दाना बजना था सदा अब तो तली महाराज ना जहाँ थाना राज ना बा जिला सराय जिला खर सांप
6: ना पाए। तो अभी ना बगान रे बिन धूप करना और बगान रे आयमा चास को बिन चास सकत गया और ना को मुद रे नो बिलती चास जहाँ तभी निलो करना नो बिलती तो कलका बिन चास लिया चिप चिप नो अभिना मेहनत सलाह ते चित चित कुबिन लगावा का नुआरे नुआरे जानकारी कटिक तेन चासी बिहाक लंग लेने वाकवा। तबे लेबिन बिलती चास एहो रे चित चित बिन का मिलिया उना कटिक बिन लेस करा।
7: अलिन जहां सिस्टम ट्रिन लगावा का नुआ दना ड्रिप मल्चिंग और ना झलर सिस्टम तो लगाओ गी।
6: अच्छा अच्छा अच्छा नुआ ड्रिप मल्चिंग और झलर सिस्टम रे कटिक बेस सही बिन लेयाकवा जे नुआ दो चित कना।
7: अच्छा नुआ रे माने तो कना जहाँ ड्रिप हुई ना ड्रिप तो मिट्टी पाइप के ना जहाँ एक फिट रे माने भोगे थे ओंडे के ना डायरेक्ट दाए नाम जहाँ पर रोए का ओंडे के दाए।
6: अच्छा अच्छा
7: मल्चिंग जहाँ कमी करना नहीं तो जतन ते एसेट कया जब जहाँ तक दा दरकार उन दा माने मौसम तक सितुम तक बाय उठा।
6: अच्छा अच्छा
7: सौंत तसर को माने एसेट करते तसर हम बाय मन
6: माने नुआ तो मेन गनुआ जहाँ तबिन आड़े में ना उना आड़े ना बिन टोपा रखा प्लास्टिक थे।
7: ठीक है ना मल्चिंग।
6: अच्छा अच्छा उना तला तला रे बिन भुगे का जहाँ उना रे दूरी चेट करना तीन जल जल रे बिन
7: एक एक फिट करते।
6: अच्छा अच्छा
7: लाइन से लाइन एक एक फिट अनुते कतार से कतार तो मैंने अभी ना 4 फिट।
6: अच्छा अच्छा मने मिट्टंग बुध जहाँ बिन रोए का मिट्टंग बिलती एक एक फिट संगीत बिन रोए का আর নৌকাতে যা কাতার সে কাতার
7: মেয়ে 4 ফিট
6: ওনাদের 4 ফিট মেয়ে। আচ্ছা না পায় কারণ এতহব যা বিন নোড়ে মিটন বিলতি বিন রোহে গিয়া উন সময় চেট বিন এমলা যাহা খাত কো যে যা চিলকা বিন রোহে গিয়া নো।
7: আচ্ছা আর মানা ধরা নাতো যা ফাইনাল সি যা বকরাও উচ্চরে যা যখন গনা যত লাগা হইও আবে গুরি লাগা বিন আর তে রাসায়নিক খাত কো ডিএপি ইউরিয়া যা বিন লাগা ইনে হলো গ লাগা ফাইনাল।
6: अच्छा अच्छा
7: तारपर ना बेड बना बिन पाइप बिछा बिन और पटम भी प्लास्टिक तारपर बिन रोहे।
6: अच्छा अच्छा इनखान नोआ जहां दारे बिन रोहे किया उना पुरे दा बिन पटाओ किया।
7: हाय
6: उना दा पटाओ कते तीन दिन रे अबिन अरो दूसरा दा बिन पटावा
7: नोआ तो हफ्ता भर।
6: अच्छा अच्छा
7: जरूरत के सब तो नेल हुई।
6: अच्छा
7: नेल हुई आज तीन रोहड़ कना बाय रोहड़।
6: अच्छा अच्छा
7: ती तुमने सब बड़े भाषा थे जब ये कना हसा जी लट्टा खान गया तीर एन खान तो अलग पटा तर।
6: अच्छा अच्छा
7: ना कम बेसी ना हुई टाइम थे दिन हिसाब थे जैसे तुम दिन करना तो अगर दरकार है लगन धरा जाए बस न टाइम आप पर खान।
6: अच्छा अच्छा अच्छा नोआ जहां दारे तला तला ली नेलिया नोआ सुतम को तबिन तोलका नोआ तो चेत ये कना नो ओकल का बिन तोलका ओका समय रे बिन तोला नोआ तो
7: नोआ के झलर सिस्टम तो कमिता ना।
6: अच्छा अच्छा
7: नोआ तो जहल कहरायन खान के अबिन मने तोल दिया बिन
6: ओ
7: खान चे फायदा चा बिन ओतर बाई नुरु अधारा ता बिन चेतार के तहन है से हां बाई से एक तरह तब लस्टिंग है जो हां बेस होता है ना जो तो ठीक है।
6: अच्छा अच्छा खान नोआ बिलती तीन दिन दबी नोका जो बिली तहन
7: ना तहन ना देर ᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱪᱟᱨ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟᱹ ᱛᱚᱢ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤᱭᱩ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
2: ᱪᱟᱨ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤᱭᱩ ᱢᱟᱱᱮ
7: ᱦᱳᱭ
2: ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
7: ᱦᱳᱭ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱥᱮ
2: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱸᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱯᱞᱚᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱵᱤᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
7: ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱴᱳᱴᱟᱞ ᱯᱞᱚᱴ 1 acre ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱦᱳᱭ
7: ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱟᱱ 1/4 ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ 25 ᱰᱤᱥᱢᱤᱞ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ
7: ᱦᱳᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ
2: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱩᱫᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ 25 ᱰᱤᱥᱢᱤᱞ ᱨᱮ
7: ᱱᱚᱸᱰᱮ 1200 ᱴᱤ ᱵᱩᱫᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ 1200 ᱵᱩᱫᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱩᱫᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱞᱟᱜᱽᱵᱷᱟᱜ
7: ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱜᱽᱵᱷᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 5 ᱠᱤᱞᱳ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱩᱰᱩᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ
7: ᱠᱚᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ 1200 ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱟᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ 5 ᱠᱤᱞᱳ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ
2: 60 ᱠᱩᱭᱱᱴᱟᱞ
7: ᱦᱮᱸ 60 ᱠᱩᱭᱱᱴᱟᱞ
2: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱹᱴ ᱪᱮᱫ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮ
7: 20 ᱴᱟᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ 20 ᱴᱟᱠᱟ
7: ᱦᱮᱸ
2: 20 ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱹᱴ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ 60 ᱠᱩᱭᱱᱴᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ 1,20,000 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱥᱴᱮᱠᱤᱝ ᱵᱤᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱢᱟᱞᱪᱤᱝ ᱵᱤᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱟᱫ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ
7: ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚᱛᱮ ᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱯᱷᱤᱜᱟᱨ 20,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱵᱷᱟᱭ 1,20,000 ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱ 20,000 ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱷᱟᱴᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ 1,00,000 ᱫᱚ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱚᱯᱷᱤᱴ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ 4 ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ 1,00,000 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
7: ᱚᱱᱟ 1/4 ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
7: ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱛᱚ ᱨᱮᱴᱟᱜ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱵᱚ
2: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ ᱡᱟᱭ ᱦᱳᱠ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤ 4 ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ 1/4 ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ 1,00,000 ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱜᱮ
7: ᱦᱳᱭ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱨᱢᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ 25,000 ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮ
7: 25,000
2: ᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱩᱢᱩᱞ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱦᱚᱨᱚᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱯᱷᱟᱞᱛᱩ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱞᱦᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
7: ᱦᱳᱭ
2: ᱛᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱪᱟᱥ ᱵᱮᱥᱟ
7: ᱵᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱢᱟ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱥᱚᱨᱚᱡᱽᱜᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨ ᱛᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚᱦᱚ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱭ ᱟᱨ 24 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱪᱚ ᱵᱤᱱᱟᱭ 4 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱮᱨᱮᱱᱴᱤ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱠᱚᱢᱯᱟᱱᱤ ᱟᱡᱟᱜ ᱩᱯᱚᱨ ᱰᱤᱯᱮᱱᱰ ᱡᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
2: ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱮᱨᱟᱛ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱟᱢᱫᱟᱱᱤ 25-30,000 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ
7: ᱟᱨ ᱵᱟᱝ
2: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ
7: ᱦᱳᱭ
2: ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
7: ᱦᱳᱭ
2: ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱜᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱪᱩᱱᱟᱹᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱪᱟᱥᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ
7: ᱦᱳᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮ ᱨᱮᱹᱴ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱴᱟᱨᱜᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱤᱧ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱞᱤᱧ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱚᱛᱚᱞ ᱵᱚᱛᱚᱞ ᱤᱫᱤᱭᱟᱵᱚ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
7: ᱡᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱦᱳᱭ
7: ᱪᱮᱫ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱜᱮ
2: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ
7: ᱦᱳᱭ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱟᱨ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
2: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱷᱳᱨ ᱠᱮᱞᱮᱱᱰᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ
7: ᱵᱮᱱᱟᱣ
2: ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ ᱚᱠᱟ ᱪᱟᱥᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ
7: ᱵᱮᱥ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
2: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱥ ᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱚᱯᱷᱤᱴ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱥ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱮᱫᱱᱟᱛᱷ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱪᱟᱥ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱵᱤᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱵᱤᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮ
7: ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱨᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱤ ᱠᱟᱜ ᱞᱤᱧ ᱚᱱᱛᱮ ᱟᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱵᱮᱸᱜᱟᱲ ᱨᱚᱦᱚᱭᱚᱜᱼᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
7: ᱟᱨᱚ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱵᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱟᱪᱷᱚᱱ
2: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱡᱤᱭᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ
7: ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱚᱛᱨᱮ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱯᱞᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱵᱤᱱ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱵᱤᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱛᱟᱥᱟᱫ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱠᱟᱹᱵᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱟᱨ ᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱛᱨᱮ ᱵᱷᱤᱲᱟᱜᱼᱟ
6: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
7: ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱯᱚᱴᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱛ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱚᱸ ᱧᱩᱨ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱛᱩᱢᱫᱟᱜ ᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱹᱵᱤᱱ
6: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ
5: ᱵᱤᱞᱟᱹᱛᱤ ᱪᱟᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱟᱱ ᱵᱮᱫᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ
8: ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱥᱤᱠᱩ ᱫᱮᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱛᱥᱟᱞᱞᱚ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮᱛᱮ ᱵᱟᱨᱯᱚᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟ
5: ᱟᱵᱚ ᱡᱤᱞᱟᱹᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱜᱚᱫ ᱤᱫᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱛᱥᱟᱞᱞᱚ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱞᱚᱱ ᱯᱳᱥᱚᱱ ᱫᱮᱠᱷᱨᱮᱠ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱵᱟᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟᱵᱤᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱᱤᱛ ᱟᱭ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱭᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱵᱷᱮᱨᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱤᱯᱳᱨᱴ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱛᱮ ᱵᱮᱥᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱤᱪᱷᱩᱠ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱦᱱᱟᱹ 4,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱷᱮᱨ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱟᱞ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱠᱟᱭ 9955131364 9090700484 ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱨᱠ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱵᱟᱞ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱤᱠᱟᱭ ᱡᱤᱞᱟ ᱩᱯᱟᱭᱩᱠᱛᱚ ᱠᱟᱨᱭᱟᱞᱚᱭ ᱛᱤᱥᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱟᱱᱠᱟᱨᱤ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ

अभी आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
4: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जोड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
3: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
5: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
6: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
8: तुम खेत पर काम कर रहे हो?
9: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
8: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसजी कराई है।
9: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं।

0: होती है। अरे अरे अरे कहाँ चल दिए?
1: NSV कराने।
0: पुरुष नसबंदी यानी NSV की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, कहा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में बेटियों की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने गुआ गोलीकांड के शहीदों को किया याद, कहा शहीदों की कुर्बानी और उनके संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को देती रहेगी प्रेरणा। भाजपा ने छात्र हितों को लेकर की आवाज बुलंद, रांची में आदित्य साहू ने संभाला मोर्चा, बाबूलाल मरांडी ने दुमका में किया नेतृत्व। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नए वोटरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए तेजी लाने का दिया निर्देश, बीएलओ को विशेष अभियान चलाने का निर्देश। और एशियन गेम्स के लिए रवाना हुई भारतीय महिला हॉकी टीम, झारखंड की 4 बेटियां टीम में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1990 छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। इस दौरान विभिन्न संकायों की 53 मेधावी छात्राओं को स्वर्ण पदक, चांसलर मेडल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
1: दीक्षांत केवल पढ़ाई पूरे होने का अवसर नहीं है, बल्कि जीवन की एक नई यात्रा का आरंभ है। आपको जो उपाधि मिली है वो आपकी मेहनत और योग्यता का प्रमाण है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान को अपने व्यवहार, अपने कार्य और अपने निर्णयों में उतारने का कार्य करें।
0: राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार कल रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 3000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि समारोह में पहली बार 2 शिक्षाविदों को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी।
2: दीक्षांत समारोह कई नवाचारों से युक्त है। हमारे कुलाधिपति गरिमा में उपस्थिति रहेगी, साथ हमारे विशिष्ट अतिथि भी रहेंगे जिनको हम आनंद उपाधि भी दे रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय एक नृत्य नाटिका है, उनकी तरफ से रांची विश्वविद्यालय का जो 66 वर्षों का इतिहास रहा है एक नृत्य नाटिका होगी और उसके बाद विभिन्न डीन है वो उपाधि देंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुआ गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड की धरती हमेशा से जल, जंगल, जमीन और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की धरती रही है। श्री सोरेन ने कहा कि वीरों का सपना और उनके संघर्ष की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। छात्रों के मुद्दे पर भाजपा ने आज से 4 दिवसीय राज्यव्यापी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कार्यालय घेराव कार्यक्रम शुरू किया। पहले दिन रांची समेत 5 जिलों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार को छात्रों के मुद्दे पर घेरा। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच और आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की।
3: भारतीय जनता पार्टी यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देगी और जो फर्जी मुकदमे हुए जब तक वापस नहीं होगा तब आगे भी आंदोलन को रुख अख्तियार करेंगे और आंदोलन को तेज करेंगे और इस सरकार को मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एफआईआर वापस करना पड़ेगा। हम तो अनेक प्रकार के विभिन्न चरणों में आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं।
0: छात्र हितों की मांग को लेकर दुमका में आयोजित घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। वहीं हजारीबाग में घेराव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री दास ने कहा कि श्री गांधी के इशारे पर हजारीबाग समेत झारखंड के कई जिलों में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और झूठा मुकदमा दायर किया गया।
4: आंदोलन के समय आंदोलन को राहुल जी ने समर्थन दिया, लेकिन जब छात्रों पर लाठी चार्ज हुई, छात्रों पर फर्जी केस हुए तो राहुल गांधी जी का कोई कमेंट नहीं, क्योंकि उनके इशारे पर ही हेमंत सोरेन जी ने छात्रों पर झूठा केस कराया जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी भर्त्सना करती और अविलंब झूठे फर्जी केस को सरकार वापस ले।
0: छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा जारी है। उन्होंने यात्रा के क्रम में आज पलामू प्रमंडल में हुंकार भरी। इस दौरान श्री महतो का युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान श्री महतो ने जोर देकर कहा कि भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा किसी दल या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्थाओं में सुधार के लिए है ताकि मेधावी युवाओं के सपने न टूटे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत नए वोटरों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरा करने वाले सभी पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने BLO को घर घर जाकर छूटे हुए पात्र युवाओं की पहचान करने तथा शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने SIR के मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने आज रांची में प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस और झामुमो की सरकार राज्य में SIR नहीं होने देना चाहती और अब इस बात में लगी है कि एक खास वर्ग के अधिक से अधिक लोगों का नाम वोटर लिस्ट में कैसे जोड़ा जाए। इधर भाजपा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने भाजपा पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को खास वर्ग के लोगों में घुसपैठिया नजर आता है, जबकि जनता के असली मुद्दों पर उसके पास कोई जवाब नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज रांची के CMPDI में समीक्षात्मक बैठक कर अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विषयों को गंभीरता से सुनते हुए उचित समाधान के लिए आवश्यक पहल का आश्वासन दिया। श्रीमती लकड़ा ने कहा कि आदिवासी और वंचित वर्गों के अधिकारों, हितों तथा कल्याण के लिए आयोग निरंतर प्रतिबद्ध है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर नक्सली संगठन JJMP के सदस्य रोहन गंजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादी के पास से एक देशी बंदूक बरामद की है। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई जिलों में कल से 11 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। बोकारो और धनबाद समेत कुछ अन्य इलाकों में कल भारी बारिश की संभावना है। 10 सितंबर को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और धनबाद में भारी वर्षा की संभावना है। 11 सितंबर को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 12 सितंबर तक आंधी और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम 20वें एशियन गेम्स में भाग लेने के लिए आज जापान रवाना हुई। टीम की अगुवाई झारखंड की स्टार खिलाड़ी सलीमा टेटे कर रही हैं। टीम में सलीमा के अलावा निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग भी शामिल हैं। झारखंड की ये चारों खिलाड़ी टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में बेटियों की भूमिका महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने गुआ गोली कांड के शहीदों को किया याद। कहा, शहीदों की कुर्बानी और उनके संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को देती रहेगी प्रेरणा। भाजपा ने छात्र हितों को लेकर की आवाज बुलंद। रांची में आदित्य साहू ने संभाला मोर्चा। बाबूलाल मरांडी ने दुमका में किया नेतृत्व। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नए वोटरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए तेजी लाने का दिया निर्देश। BLO को विशेष अभियान चलाने का निर्देश। और एशियन गेम्स के लिए रवाना हुई भारतीय महिला हॉकी टीम, झारखंड की चार बेटियां टीम में निभाएंगी महत्वपूर्ण भूमिका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद जिले में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए पुलिस सक्रिय है। पिछले महीने से पुलिस ने जागरूकता का दायरा बढ़ाया है और गांव-गांव तक जाकर लोगों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। साइबर डीएसपी प्रदीप कुमार साव ने बताया कि इसी क्रम में एक शिविर आयोजित कर सभी पुलिस कर्मियों को भी डिजिटल साक्ष्यों से साइबर अपराधियों तक पहुँचने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया है।
2: धनबाद जिला में 17 अगस्त से साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोग सब स्कूल कॉलेज और रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज धनबाद जिला के जितने भी थाने हैं वहां से अधिकारियों को बुलाया गया है और उनको साइबर केस का अनुसंधान के संदर्भ में तकनीकी जानकारी और फॉरेंसिक एविडेंस के साथ साथ जो सीजर्स किए जाते हैं मोबाइल फोन लैपटॉप टैबलेट्स उनका सीजर कैसे बनाया जाना है उनका इमेजिंग कैसे किया जाना है ताकि माननीय कोर्ट जो उनकी एविडेंस वैल्यू है वो ज्यादा हो। इसी क्रम में हम लोग एक साइबर एक्सपर्ट को बुलाए हैं लेटेंट फॉरेंसिक उनके सीईओ द्वारा ये लेक्चर दिया जाए।
1: इधर ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और व्यापक बनाने के लिए दूरसंचार विभाग धनबाद पुलिस के साथ समन्वय कर काम कर रहा है। वहीं आईआईटी आईएसएम के छात्रों का एक समूह भी साइबर साथी के रूप में लोगों को जागरूक करने में अपनी भागीदारी निभा रहा।
3: 17 अगस्त से धनबाद पुलिस के द्वारा साइबर सेफ्टी अवेयरनेस वीक शुरू किया गया है। इसमें विभिन्न प्रोग्राम हम लोगों के द्वारा इनिशिएट किया गया है जिसके थ्रू हम धनबाद का 35 लाख जो आबादी है इन लोगों तक साइबर सेफ्टी का जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाने के लिए जो मकसद है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें स्कूल्स को हम रीच आउट किए हैं, रात्रि चौपाल लगा के पब्लिक से भी संपर्क किए हैं और बाकी जो है बुक लॉन्च हुआ है हमारा वो बुक्स को जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं और इसमें ऑडियो वीडियो जो वैन थे उसको यूज किए हैं ताकि पब्लिक तक सारा सूचना जा सकता है और मॉल्स में हम ऑडियो सेशन भी शुरू किए हैं। तो इसी डायरेक्शन पे एक और इनिशिएटिव अभी शुरू हुआ है धनबाद पुलिस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की एक प्रोग्राम होती है संचार में, तो उन संचार मित्रों को रिक्रूट करते हैं और उनको ओरिएंटेशन देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो उनको NCRP 1930 चक्षु पोर्टल और संचार साथी पोर्टल और बाकी सारा जितना भी डिजिटल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवेलेबल किया गया है वो सारा एरियाज में उनको ओरिएंटेशन दिया गया है ताकि पब्लिक तक ये लोग जाके अपना जागरूकता शुरू कर सकें।
1: धनबाद के केंद्र गोल्फ ग्राउंड में लगातार खेलों से इतर आयोजन होने से स्थानीय खिलाड़ियों और लोगों में आक्रोश है। खिलाड़ियों का कहना है कि यहां लगातार गैर क्रीड़ा आयोजन होने से उनका अभ्यास पूरी तरह बाधित हो रहा है। इसके विरोध में लोगों ने बीते दिनों ग्राउंड को खेलकूद के लिए सुरक्षित रखने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोगों का कहना है कि शहर में यही एक मैदान है जहां लोग खेलते कूदते हैं, बुजुर्ग टहलने आते हैं, ऐसे में यहां मेला आदि लगाए जाने से जहां एक ओर लोगों को परेशानी होती है वहीं दूसरी ओर ग्राउंड भी हमेशा गंदा रहता है।
4: गोल्फ ग्राउंड में जो है मेला लगाया जाता है बार बार, इसी को लेकर के जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हम लोग मांग यही चाहते हैं कि जितने भी लड़के बच्चे आते हैं यहाँ पर उनको जो है स्वच्छ परिवेश वगैरह मिले, मतलब जगह ना छेका जाए और मेला वगैरह जो है दूसरे भी मैदान है शहर में वहाँ लगाया जाए, यहाँ पर ना लगाया जाए। कम से कम बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रेमी लोग आते हैं खेलकूद के भावना से, धनबाद में एकमात्र यही ग्राउंड बचा हुआ है।
1: दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: आपको की समझ रहती है।
1: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
0: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूँगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
0: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
1: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
0: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
1: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
0: और लड़के की 21 वर्ष है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं ये पहला खत जो हमें भेजा है घाटशिला से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, संतोष आनंद, गांव दलाई केला, पोस्ट पदमपुर, जिला सरायकेला से लक्ष्मण सोए, बिरसा सोए, राज सोए, अनीता सोए, मनीषा सोए, पूनम सोए और समस्त सोए परिवार, कुचाई ग्राम इचाहतु से गोला राम लोवादा, लुधरी सोमनाथ, पूर्णिमा लालमुनि, विंजना और पूरा लोवादा परिवार, ग्राम लोसोदिकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद, जीतू, साईमान और महतो परिवार, कुचाई बिद्री से केपी सोए, सरिता, दुर्गमती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल और मुन्ना सोए, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म जहर का ये गीत, आवाज़ श्रेया घोषाल की।

और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत। पसंद आप सबों की है। न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद, रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीस, अंश, अंशु और मुन्ना, बड़ा बाम्बू सुपाई साई से देवेंद्र तांती, प्रकाश तांती, कुमारी निशा तांती, राकेश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक, ठाकुर प्रसाद गुप्ता, सुशांक सिंह देव, ईश्वर बानरा, ललित बाबू और देवेन बाबू, टाटानगर कीताडी से चंद्रमोहन पात्रो, चंद्रवती पात्रो, निखिल पात्रो, उजाला पात्रो, युवराज, सिवान और बिराज, पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदिनी महली, साजीव सोरेन, विजय बेसरा और एनएस महली। आप सबों की पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत आवाज़ किशोर कुमार की, और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ
1: ᱤᱱᱥᱟᱱᱚ ᱠᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱞᱵᱟᱭᱩ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱭᱟ ᱤᱭᱩᱱᱮᱥᱠᱳ ᱠᱟ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱦᱮ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱛᱮᱞ ᱚᱨ ᱜᱮᱥ ᱡᱚᱞᱟᱱᱟ ᱯᱮᱲ ᱠᱟᱴᱱᱟ ᱚᱨ ᱯᱚᱥᱩᱣᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱢᱟᱱᱵᱤᱭᱚ ᱠᱟᱢ ᱮᱥᱮ ᱜᱨᱤᱱ ᱦᱟᱣᱩᱥ ᱜᱮᱥᱮᱥ ᱩᱛᱯᱚᱱ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱡᱚ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱨ ᱫᱮᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱔ᱚᱫᱭᱳᱜᱤᱠ ᱠᱨᱟᱱᱛᱤ ᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤ ᱠᱤ ᱥᱚᱛᱚᱦ ᱠᱟ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ 1 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱥᱮᱞᱥᱤᱭᱟᱥ ᱥᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱵᱟᱲ ᱪᱩᱠᱟ ᱦᱮ ᱚᱨ ᱡᱚᱢᱤᱱ ᱢᱟᱦᱟᱥᱟᱜᱚᱨ ᱠᱮ ᱢᱩᱠᱟᱵᱞᱮ ᱚᱨ ᱛᱮᱡ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱦᱳ ᱨᱟᱦᱤ ᱦᱮ ᱵᱚᱨᱯᱷ ᱠᱮ ᱯᱨᱟᱪᱤᱱ ᱚᱫᱷᱚᱭᱚᱱ ᱵᱟᱛᱟᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱠᱤ ᱦᱟᱣᱟ ᱢᱮ ᱠᱟᱨᱵᱚᱱ ᱰᱟᱭᱚᱠᱥᱟᱭᱤᱰ ᱠᱟ ᱥᱛᱚᱨ ᱟᱵ 8 ᱞᱟᱠᱷ ᱥᱟᱞᱚ ᱭᱟ 800 ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱥᱟᱞᱚ ᱢᱮ ᱥᱚᱵᱥᱮ ᱡᱟᱫᱟ ᱦᱮ ᱵᱚᱨᱯᱷ ᱠᱟ ᱯᱤᱜᱚᱞᱱᱟ ਸਮੁੰਦਰ ᱠᱟ ᱥᱛᱚᱨ ᱵᱟᱲᱱᱟ ᱭᱟ ᱵᱚᱫᱞᱟᱵ ᱵᱟᱯᱚᱥ ᱱᱟᱦᱤ ᱠᱤᱭᱟ ᱡᱟ ᱥᱚᱠᱛᱟ ᱫᱷᱤᱨ ᱵᱷᱤ ᱩᱛᱥᱚᱨᱡᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱛᱟᱨ ᱵᱟᱲᱛᱟ ᱡᱟ ᱨᱟᱦᱟ ᱦᱮ ᱥᱚᱢᱩᱫᱨᱚᱱ ᱵᱚᱨᱯᱷ ᱠᱤ ᱯᱚᱨᱛᱚᱱ ᱚᱨ ᱥᱚᱢᱩᱱᱫᱚᱨ ᱛᱚᱞ ᱢᱮ ᱦᱳᱱᱮ ᱵᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱭ ᱯᱚᱨᱤᱵᱚᱨᱛᱚᱱ ᱟᱵ ᱞጚᱴᱟᱭᱮ ᱡᱟ ᱱᱟᱦᱤ ᱥᱚᱠᱛᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱵ ᱡᱟᱱᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱯᱨᱤᱛᱷᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱯᱢᱟᱱ ᱞᱚᱜᱵᱷᱚᱜ 1.1 ᱰᱤᱜᱨᱤ ᱥᱮᱞᱥᱤᱭᱟᱥ ᱛᱚᱠ ᱵᱟᱲ ᱪᱩᱠᱟ ᱦᱮ ᱡᱤᱥᱥᱮ ᱡᱚᱢᱤᱱ ᱥᱚᱢᱩᱱᱫᱚᱨ ᱚᱨ ᱵᱟᱭᱩᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱥᱚᱵ ᱯᱚᱨ ᱜᱮᱦᱨᱟ ᱟᱥᱚᱨ ᱯᱟᱲᱟ ᱦᱮ
0: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱫᱮᱞᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱡᱮ ᱵᱷᱮᱸᱴᱵᱟᱨᱛᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱛᱮ ᱞᱚᱛᱛᱮᱫᱟᱨ ᱥᱚᱵᱡᱤᱢ ᱠᱮ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱦᱟᱞᱮᱱ ᱥᱩᱱᱰᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱪᱚᱸᱫᱽᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ
2: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱜᱤᱭᱟ ᱠᱚᱱᱮᱱ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱚᱣᱟᱲᱤ ᱠᱟᱨᱥᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱱᱮᱛᱮ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱜᱤᱭᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱚᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱱᱮᱛᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱫᱚ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱚᱵᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱣ ᱜᱤᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱛᱟ ᱟᱢᱤᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚᱭᱞᱤᱧ ᱱᱟᱢᱟᱠᱟ ᱤᱭᱮᱢᱟᱨ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱤᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ
3: ᱵᱟᱞᱮᱱ ᱥᱩᱱᱰᱤ ᱟᱛᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱨᱥᱚᱱᱰᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱥᱟᱭ
2: ᱢᱩᱱᱰᱟᱥᱟᱭ ᱮᱥᱩᱨ ᱟᱥᱟᱨ ᱭᱟᱜᱮ ᱵᱟᱞᱮᱱ ᱢᱟᱭ ᱮᱱᱫᱚ ᱢᱟᱨ ᱟᱞᱤᱝ ᱯᱮ ᱮᱛᱮ ᱡᱚᱣᱟᱨ
3: ᱟᱞᱤᱝ ᱯᱮ ᱛᱨᱮ ᱠᱤᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱣᱟᱨ
2: ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱮ ᱛᱤᱭᱟ ᱯᱮ ᱩᱲᱩ ᱛᱮ
3: ᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱮᱞᱮ ᱥᱤᱵᱟ ᱟᱥᱤ ᱛᱮᱱᱟᱞᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱝ ᱯᱩᱞᱩ ᱠᱚᱞᱮ ᱵᱤᱰᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱚᱱᱟᱝᱞᱮ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ ᱱᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱ
2: ᱯᱩᱞᱩ ᱠᱚ ᱥᱩᱣᱟᱞ ᱪᱤ ᱚᱱᱚ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱠᱚ
3: ᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱞᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ
2: ᱤᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱰᱚ ᱚᱱᱰᱚ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱢᱤᱨᱡᱟ ᱵᱤᱱ ᱯᱟᱲᱟ ᱠᱟᱫᱟ
3: ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱮ ᱟᱢᱟᱨ ᱥᱤᱞᱤᱝ ᱯᱟᱲᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱮᱱᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱰᱟᱠᱟ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱭᱠᱮ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱨᱩᱣᱟᱹᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
2: ᱟᱪᱷᱟ ᱱᱮᱱ ᱢᱤᱨᱪᱟ ᱡᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱯᱟᱲᱟ ᱞᱮᱛᱮ ᱠᱤᱱ
3: ᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ 20-25 ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱜᱮ
2: ᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱞᱮ ᱫᱚ 20-25 ᱫᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱤᱧ ᱤᱧ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ
3: ᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹ ᱰᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱭ ᱴᱤᱠ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱞᱤᱧ ᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱰᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱞᱤᱧ ᱮᱢ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ ᱜᱩᱨᱤ ᱩᱫᱟᱨ ᱠᱚ
2: ᱜᱩᱨᱤ ᱩᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱩᱨᱤ ᱩᱫᱟᱨ ᱮᱢ ᱠᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱤᱭᱮ ᱫᱟᱨᱩ
3: ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱨᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱮ ᱞᱟᱜᱮ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱜᱮ
2: ᱤᱱᱫᱚ ᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱤᱭᱟ ᱯᱩᱞᱩ ᱯᱩᱞᱩ ᱱᱟ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱡᱚᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱛᱤᱭᱟ ᱦᱮᱸ
3: ᱤᱭᱟᱹ
2: ᱤᱱᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱯᱩᱞᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱜᱮ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱤᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱟᱛᱮ ᱯᱮ ᱛᱟᱭᱟᱨᱤ
3: ᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟ ᱛᱟᱞᱤᱧ ᱥᱤᱞ ᱤᱭᱟᱹ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱥᱤᱞᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱠᱟ ᱨᱚᱞᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱲᱟᱢ ᱞᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱩ ᱠᱚ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱠᱩᱲᱟᱢ ᱞᱮ ᱛᱟᱞᱤᱧ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱠᱚ ᱠᱩᱲᱟᱢ ᱥᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱟᱞᱤᱧ ᱰᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱞᱤᱧ ᱵᱟᱭᱛᱮ ᱛᱮ
2: ᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱤᱱᱟᱹᱠᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱞᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱯᱮᱢ ᱵᱟᱭ
3: ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱩᱨᱤ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱜᱮᱞᱮ ᱮᱢ ᱞᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱜᱩᱨᱤ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱚᱢᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱵᱟᱫ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱰᱟᱭ ᱠᱚ ᱞᱮ ᱮᱢᱤᱭᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱨᱚ ᱰᱟᱭ ᱛᱩᱭᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱯᱮᱢᱤᱭᱟ
3: ᱮᱱ ᱟᱸᱡᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
2: ᱚ ᱟᱸᱡᱟ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱰᱟᱭ ᱫᱚ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱵᱟᱭᱭᱚ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱨᱟᱣᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱯᱩᱞᱩ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱪᱤᱞᱠᱮ
3: ᱨᱚᱣᱟᱭᱟᱞᱮ
2: ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱯᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭᱟ
3: ᱡᱟᱝᱞᱮ ᱨᱚᱣᱟᱭᱟ
2: ᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱦᱤᱛᱟᱹ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱦᱮᱛᱮ ᱯᱮ
3: ᱮᱱ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱦᱮᱛᱮ ᱞᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱨ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱱᱚ ᱨᱚᱣᱟᱭ ᱛᱤᱭᱟ ᱵᱤᱱ ᱩᱵᱩᱛᱮ ᱞᱚᱛᱚ
3: ᱯᱩᱞᱩ
2: ᱤᱭᱟ
3: ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱵᱩᱴᱟᱹᱱ ᱠᱟᱞᱤᱧ ᱨᱚᱣᱟᱭᱟ
2: ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱤᱱ ᱥᱚᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱤᱱ ᱨᱚᱣᱟᱭᱟ ᱪᱮ ᱚᱸᱰᱚ ᱵᱤᱱ
3: ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱣᱟᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮᱞᱮ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱤᱭᱟᱹ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱢᱟ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱢᱮᱱ ᱠᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱠᱤ ᱚᱸᱰᱚ ᱚᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱱᱟᱭᱤ ᱚᱪᱤ ᱠᱚᱱ ᱪᱤᱞᱠᱤ
3: ᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱱᱟᱭᱤ ᱚᱛᱤᱭᱟ
2: ᱚᱛᱮ ᱨᱮ ᱱᱟᱭᱤ ᱚᱛᱤᱭᱟ
3: ᱡᱟᱴᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱴᱟᱭᱟ
2: ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱠᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚ ᱟᱹᱱᱤ
3: ᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱱᱟ ᱟᱭᱩᱵ ᱞᱮ ᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱭ ᱵᱮᱱᱟᱝ ᱞᱮ ᱫᱩᱞᱤᱭᱟ
2: ᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱢᱤᱥᱮᱜᱮ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱨᱮ ᱢᱤᱥᱮᱜᱮ ᱠᱟᱹᱪᱤ
3: ᱤᱭᱟ
2: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱛᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱱᱚ ᱞᱮᱵᱮᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱱ ᱞᱤᱡᱮ ᱡᱟᱝ ᱵᱤᱱ ᱵᱤᱴ ᱠᱤᱰᱟ ᱢᱮᱱᱛᱤᱭᱟ
3: ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱞᱤᱝ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ ᱵᱤᱛ ᱡᱟᱝ ᱞᱤᱝ ᱵᱤᱴ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱱᱤᱠᱟ ᱫᱟ ᱟᱠᱟᱞᱤᱝ ᱫᱩᱞᱤᱭᱟ
2: ᱟᱪᱷᱟ ᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱵᱤᱱ ᱫᱩᱞᱤᱭᱟ
3: ᱠᱟᱞᱤᱝ ᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱡᱩᱠᱟ ᱞᱚᱞᱚᱱ ᱚᱞᱮᱱ ᱚᱠᱟᱢᱮᱱ ᱠᱮᱛᱮ ᱵᱤᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱩᱜᱩᱢ ᱩᱜᱩᱢ ᱛᱮᱱ
2: ᱟᱪᱷᱟ
3: ᱮᱱᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱫᱟ ᱟᱞᱤᱝ ᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱟ ᱟᱸᱡᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱯᱟᱨᱟᱢᱚ
2: ᱟᱪᱷᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨ ᱢᱤᱥᱤᱢ ᱥᱩᱫᱩ ᱠᱟ ᱚᱢᱚ
3: ᱟᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱡᱩᱠᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱵᱤᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱ ᱫᱚ ᱞᱚᱞᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱮᱱᱡᱚ ᱮᱜᱮᱱ ᱮᱜᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱨᱤᱠᱮ ᱚᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱟᱞᱤᱝ ᱫᱚ ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱛᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱞᱤᱝ ᱫᱩᱞᱤᱭᱟ
2: ᱤᱭᱟ
3: ᱮᱱᱪᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱟᱞᱤᱝ ᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱯᱟᱨᱟᱢᱚ
2: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱸᱡᱟᱜ ᱢᱚᱱ ᱯᱟᱨᱟᱢᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱵ ᱚᱢᱚᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱵ ᱦᱩᱰᱤᱝ ᱱᱚ ᱛᱟᱭᱤ ᱠᱮᱱᱚᱜᱼᱟ 2 ᱤᱱᱪ 3 ᱤᱱᱪ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱭᱤ ᱠᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱛᱤᱝ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱟᱪᱷᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱤᱪᱤᱠᱮ ᱭᱟᱢ
3: ᱮᱱ ᱡᱩᱠᱟ ᱦᱟᱨᱟᱭᱱᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱞᱮᱱ ᱵᱟᱫ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱴᱩ ᱯᱟᱛᱟ ᱚ ᱞᱮᱱ ᱵᱟᱫ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱮᱱ ᱵᱩᱴᱟ ᱵᱟᱭ ᱚᱨ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱰᱟᱭᱞᱤᱝ ᱭᱟᱢᱤᱭᱟ
2: ᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱰᱟᱭ ᱵᱤᱱᱟᱢᱤᱭᱟ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱯᱮᱱ ᱠᱚ ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱠᱟ ᱯᱚᱫᱟ ᱢᱟᱡᱵᱩᱛ ᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱮᱱ ᱵᱩᱴᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱵᱟᱭ ᱚ
2: ᱟᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ
3: ᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱟᱡᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱚ ᱪᱟᱢᱮᱱᱟ ᱨᱚ ᱫᱚ ᱭᱩᱨᱤᱞᱤᱝ ᱰᱟᱞᱟᱭ
2: ᱟᱪᱷᱟ
3: ᱦᱟᱨᱟᱛᱟᱵᱚ ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱦᱟᱨᱟᱛᱟᱵᱚ
3: ᱥᱟᱠᱟᱢ
2: ᱠᱚ ᱯᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱤᱧᱴᱷᱮᱱ ᱪᱤᱠᱮᱱ ᱨᱮᱰ ᱠᱚ ᱯᱮ
3: ᱮᱠᱴᱩ ᱨᱮᱰ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹᱞᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱯᱮᱪᱠᱟᱨᱮ ᱛᱤᱭᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱞᱴᱤ ᱨᱮᱞᱮ ᱞᱤᱭᱟ ᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱮᱠ ᱵᱟᱞᱴᱤ ᱮᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱫᱩ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱮᱪᱠᱟᱨ ᱞᱮ ᱢᱟᱨᱟᱣᱟᱭᱟ
2: ᱪᱤᱫᱩ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱡᱚᱢ
3: ᱠᱟᱠᱚ ᱡᱚᱢᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨ
2: ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱭᱚ
3: ᱱᱤᱭᱟᱹᱞᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱞᱮ ᱯᱮᱪᱠᱟᱨ ᱭᱟ ᱪᱟᱭᱩ ᱯᱮᱱ ᱮᱱᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱞᱮ ᱮᱱ ᱫᱩᱞ ᱯᱮᱪᱠᱟᱨ ᱥᱟᱯᱤᱭᱟ
2: ᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ
3: ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱞᱮ ᱥᱟᱯᱟᱭᱟ ᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱮᱪᱠᱟᱨ ᱥᱟᱯᱟᱭᱟᱞᱮ ᱟᱫᱚ ᱛᱚᱲᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱞᱮ ᱵᱤᱰᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮᱞᱮ ᱪᱤᱨ ᱜᱮᱞᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱫᱚ
2: ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱮᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚᱱᱛᱨᱟ ᱢᱤᱥᱤᱢ ᱥᱮ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱪᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱ ᱨᱮᱭᱚ ᱛᱮᱜᱟ
3: ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱞᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱞᱮ ᱵᱟᱭᱛᱮ ᱮᱱ
2: ᱢᱟᱭ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱥᱚ ᱵᱚᱱᱮ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱜᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱚᱛᱚᱨᱟ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱛᱮ ᱤᱠᱤᱱᱟ ᱱᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱪᱤᱢᱤᱱᱤᱝ ᱱᱚ ᱮᱱ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱞᱮᱱ ᱛᱮ ᱤᱠᱤᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱᱤᱝ ᱱᱚ ᱤᱱᱮᱛᱮ ᱟᱭ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱵᱟᱞᱮᱱ
3: ᱛᱮ ᱟᱭ ᱤᱱᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱮᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱰᱟᱞᱤ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱠᱤᱨᱤᱧᱮᱭᱟ
2: ᱤᱭᱟᱹ
3: ᱟᱫᱚ ᱪᱟᱯ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱮ ᱥᱟᱨᱮ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ 20-25,000 ᱨᱩᱯᱟᱭ ᱱᱟ
2: ᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱞᱮᱱ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱥᱟᱵᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱫ ᱵᱟ
3: ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱮ ᱞᱮᱱ ᱛᱮ
2: ᱤᱭᱟ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱡᱟᱱ ᱯᱷᱟᱥᱟᱞ ᱜᱮᱢ ᱚᱞ ᱞᱮᱭᱟ ᱪᱟ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱤᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱚᱪᱚ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱱᱟᱢᱚ
3: ᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱞᱮ ᱟᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱞᱮ ᱵᱤᱰᱟᱹᱭ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱪᱤᱨᱜᱮᱞ ᱛᱮᱫᱮ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱮ ᱤᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱞᱮ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱠᱮ ᱛᱮᱞᱮ ᱟᱠᱟᱨᱤᱧᱟ ᱪᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱴ ᱨᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱨᱮᱴ ᱨᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮ ᱛᱮ
2: ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱱᱚ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱮᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱠᱟᱡᱤ ᱱᱚ ᱛᱟᱵᱤᱱ
3: ᱱᱟ ᱞᱟᱜᱵᱟᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱟᱨᱪᱟᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱮᱱᱰᱟ ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱠᱟᱨᱪᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ
2: ᱠᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱚᱢ 3-4,000 ᱪᱮᱫ
3: ᱱᱤᱭᱟᱹ 3-4,000 ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱠᱚᱞᱚ ᱫᱚ 5,000 ᱫᱚᱞᱤᱧ ᱠᱟᱨᱪᱟᱭ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱚᱫᱟᱨ ᱠᱚᱞᱚ ᱥᱟᱵᱤᱱ 5,000 ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
3: ᱠᱟᱨᱪᱟ
2: ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟ
3: ᱥᱟᱵᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱨᱮᱴ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱛᱮ
2: ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ
3: ᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱤᱭᱟ ᱤᱭᱟ
3: 500 ᱠᱮ ᱛᱮ ᱯᱮᱠᱮᱴ
2: ᱨᱮ ᱯᱮᱠᱮᱴ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱩᱯᱪᱟᱨᱤᱛ ᱵᱤᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱭᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤᱱᱚ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤ ᱱᱮᱱ ᱥᱤᱨᱢᱮ ᱟᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱮᱢᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱵᱚ ᱛᱮ ᱟᱵᱤᱱ ᱩᱲᱩᱛ ᱪᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱚ
3: ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱚ ᱞᱟᱵᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
2: ᱚ ᱟᱪᱷᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱩᱲᱩᱵ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱱᱚ ᱞᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱮᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱚᱣᱟᱨ ᱠᱚ ᱨᱮᱢ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱫ ᱪᱮ ᱠᱚᱱ ᱵᱮᱝᱠ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱠᱮᱫᱟ
3: ᱚᱣᱟᱨ ᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱨᱮ ᱵᱟᱭ ᱮᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱡᱩᱠᱟ ᱡᱩᱠᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱢᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱣ ᱟᱪᱷᱟ
2: ᱤᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱤᱠ
3: ᱚᱣᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱟ ᱪᱤᱱᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱪᱟᱣ ᱢᱮᱱᱛᱮ
2: ᱟᱵᱤᱱ ᱠᱩᱭᱩ ᱱᱚᱵᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱨᱤᱢᱤᱱ ᱪᱮᱨᱟ ᱵᱤᱱ ᱱᱮᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱥ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱮᱞᱵᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱩᱭᱩᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱱ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱯᱟᱹᱜᱮ ᱜᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱮᱱᱟᱣ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤ ᱪᱤᱞ ᱠᱮᱛᱮ ᱠᱩᱭᱩᱱ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱮᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱨ ᱯᱟᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱥᱟᱫᱮ ᱥᱩᱨ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱮᱭᱤ
3: ᱱᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧ
2: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮ ᱤᱠᱤᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱷᱚᱱᱱᱚᱵᱟᱫ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱤᱠᱤᱨ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡ
0: ᱫᱟᱨ ᱥᱚᱵᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱵᱤᱥᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱩᱛᱩᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱤᱱ ᱵᱟᱦᱟᱞᱮᱱ ᱥᱩᱱᱰᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱫᱮᱞᱟ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱧᱚᱜᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ
4: ᱢᱟᱱᱚᱱᱤᱭᱚ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨ ᱢᱳᱫᱤ ᱡᱤ ᱠᱮ ᱫᱩᱨᱫᱚᱨᱥᱤ ᱱᱮᱛᱨᱤᱛᱵᱚ ᱢᱮ ᱯᱤᱪᱷᱞᱮ 8 ᱥᱟᱞᱚ ᱢᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱮᱵᱚᱢ ᱤᱥᱥᱮ ᱡᱩᱲᱮ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱟᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱵᱟᱱᱟᱱᱮ ᱟᱨ ᱠᱤᱥᱟᱱᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱥᱚᱠᱛ ᱮᱵᱚᱢ ᱟᱛᱢᱚ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱵᱟᱱᱟᱱᱮ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱠᱟᱭ ᱢᱚᱦᱚᱛᱚᱯᱩᱨᱱ ᱠᱟᱫᱟᱢ ᱩᱴᱷᱟᱭ ᱜᱟᱭ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱞ 2013-14 ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱠᱮᱵᱚᱞ 21,933 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱨᱩᱯᱮ ᱛᱷᱟ ᱵᱟᱦᱤ ᱥᱟᱞ 2022-23 ᱢᱮ ᱤᱥᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱠᱟᱨ 1,24,000 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱠᱟᱨ ᱫᱤᱭᱟ ᱜᱟᱭᱟ ᱛᱟᱵᱷᱤ ᱛᱚ ᱥᱟᱞ 2013-14 ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱫᱽᱫᱟᱱ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ 265.05 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱛᱷᱟ ᱵᱟᱦᱤ ᱥᱟᱞ 2021-22 ᱠᱮ ᱛᱤᱥᱨᱮ ᱟᱜᱨᱤᱢ ᱚᱱᱩᱢᱟᱱ ᱢᱮ ᱭᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱠᱟᱨ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ 314.51 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱦᱚ ᱜᱟᱭᱟ ᱵᱟᱦᱤ ᱥᱟᱞ 2013-14 ᱢᱮ ᱵᱟᱜᱽᱣᱟᱱဤ ᱯᱷᱚᱥᱞᱚ ᱠᱟ ᱩᱛᱯᱟᱫᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ 280 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱛᱷᱟ ᱵᱟᱦᱤ ᱥᱟᱞ 2021-22 ᱢᱮ ᱭᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱠᱟᱨ 333.25 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱦᱚ ᱜᱟᱭᱟ ᱠᱤᱥᱟᱱ� ᱠᱤ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷᱤ ᱡᱟᱨᱩᱨᱚᱛᱚ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱯᱤᱮᱢ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱱᱤᱫᱷᱤ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱞᱟᱜᱩ ᱠᱤ ᱜᱟᱭ
5: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
4: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
6: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
4: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
7: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
4: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
8: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
4: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
9: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ, मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
4: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
10: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
4: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱟᱪᱠᱟᱨᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱚᱠ ᱜᱤᱛᱤ ᱛᱮ ᱯᱚᱫᱢᱚᱞᱳᱪᱚᱱ ᱵᱮᱥᱨᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर, और अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। फरमाइशी गीतों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं ये पहला फरमाइशी गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म सलामी, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। फरमाइश आप सबों की है बोरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से विनोद मोनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मोनत, चेतन नाहरा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मोनत। सरायकेला पारापुर देसावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांत्री मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पारापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू और एफएम शिवा मुंडरी। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंदरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सबों की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म सलामी का ये गीत, आवाज़ कुमार सानू और अलका याग्निक की।

और अब सुनवा रहे हैं फिल्म, ये है मुंबई मेरी जान का, ये गीत आवाज कुमार सानू की, संगीत जतिन ललित का, फरमाइश आप सब होगी है। मोहल्डिया सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अनु तन्नू, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक और गुलशन नायक, वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी नताशा, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार, पवन मीना पवन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नौनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, टाटानगर गीताडी से चंद्रमोहन पात्रो, चंद्रवती पात्रो, निखिल पात्रो, उजाला पात्रो, युवराज सिवान और विराज, बड़ा बाम्बो सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती, कुमारी निशा तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, ठाकुर प्रसाद गुप्ता, सुशांक सिंह देव, सुदर्शन प्रमाणिक, ईश्वर बानरा, ललित बाबू और देवेंद्र बाबू, आप सबों की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म, ये है मुंबई मेरी जान का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के स्वर में फिल्म साजन का ये फरमाइशी गीत, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत के फरमाइश करता थे बरानिमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार, गांव कीता सरायकेला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, शुभम गोप, विकी गोप, राजू गोप, विनोद गोप, गीता देवी, रीता देवी, सुनीता देवी, अनामिका कुमारी। सहावा टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा साइना, विशाल मिगलानी, सुपरिया अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये फरमाइशी गीत। इस गीत को सुनना चाहा था दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, रेलवे कॉलोनी भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयेश नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, दंतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवेई से गुलाबदास मानिकपुरी, रेंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ, ग्राम बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। और अब सुनते हैं फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये देशभक्ति गीत, आवाज़ उदित नारायण की, बोल जावेद अख्तर के और संगीत जतिन ललित का।

अभी आपने सुना फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का ये देशभक्ति गीत उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार जतिन ललित। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है, इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
4: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ की सरकार, वहाँ के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
6: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
7: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो चार लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंग क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिराआत और सबकी शमूलियत शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की मालियत के कई प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर कोलंबो पहुंच गए हैं, ताकि बाहमी दिफा और समंदरी सरहद से मुतालिक तआवुन को फरोग दिया जा सके। रूस ने यूक्रेन लड़ाई के खात्मे के लिए भारत की अमन कोशिशों की हिमायत की है। रूस ने इस मामले पर भारत के मौकिफ से वाबस्तगी का इजहार किया है। बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा और शुमाल मशरकी रियासतों में कल बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। और अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगों समेत भारत ने 5 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत फिनटेक सफर को नई बुलंदियों तक ले गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिराआत और सबकी शमूलियत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम जैसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंस के शोबे में नए इम्कानात खोल रही हैं। जनाब मोदी ने आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 7वें एडिशन से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने फिनटेक के चैंपियन के तौर पर UPI की सताइश की और इस बात का जिक्र किया कि पिछले महीने 2400 करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गईं। उन्होंने कहा कि अब भारतीय UPI 11 मुल्कों में दस्तियाब है।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
0: पिछली सहमाही में मुल्क के काबिले जिक्र मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की की सताइश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि चैलेंजों से पुर आलमी तनाजात, गैर यकीनी सूरत हाल और तवानाई और जरूरी अशिया की आलमी सप्लाई चेन्स पर दबाव के बावजूद भारत की 7.8% तरक्की ने दुनिया को एक बार फिर उम्मीद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मुल्क की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- तक पहुंचा दिया है, जिसमें एक मुस्तहकम आउटलुक शामिल है, और इस तरह भारत 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे के बाद ए रेटिंग के जुमरे में वापस लौटा है। 4 रोजा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मुंबई में 8 से 11 सितंबर तक मुनक्किद हो रहा है। इससे कबल दिन में आज वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी रेलवे के लिए वक्फ मालगाड़ी की राहदारियों के 3 अहम सेक्शन मुल्क के नाम वक्फ किए और ये मालगाड़ी की राहदारी के नेटवर्क की पूरी तरह तकमील और बाकायदा कामकाज शुरू होने की अलामत है। जनाब मोदी ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू अंबरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक मुसाफिर रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो दूर दराज के कबायली इलाके अलीराजपुर को कौमी रेल ग्रिड से जोड़ती है। वज़ीर-ए-आज़म ने 9,700 करोड़ रुपए की मालियत के रेलवे के 3 तौसी प्रोजेक्टों का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चिप से लेकर शिप तक भारत मैन्युफैक्चरिंग के नए मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है।
1: अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक मुकम्मल खुद कफील सप्लाई चेन मुल्क के अंदर तैयार हो रही है, जो हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक से समंदरों में भारी जहाजरानी तक का अहाता करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज के तौर पर उभरा है और वो अब खुद जदीद तरीन रेलगाड़ियों और मेट्रो के कोच बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर की तेजी से होती कायापलट को भी उजागर किया।
1: आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: वजीर आजम ने नवसारी में नौ तामीर शुदा बीजेपी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद एक पुरहजूम अवामी रैली से खिताब किया। जनाब मोदी ने शहरियों और अवामी नुमाइंदों से जोर देकर कहा कि वो समाजी खिदमात और सफाई को रोजमर्रा की बिला कोशिश आदत बना लें, साथ ही इस बात को यकीनी बनाएं कि तरक्याती स्कीमों की रसाई आखिरी फर्द तक हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स सरबरा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतादिद रहनुमाओं के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह बात कही। रूस यूक्रेन जंग के सिलसिले में तर्जुमान ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ राबते में है और इस बात पर गौर कर रहा है कि इस लड़ाई को रोके जाने के सिलसिले में क्या कोई नजरियात और तजावीज हैं जो मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में यूक्रेन और पोलैंड का दौरा किया था। अपनी बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि भारत ने मुसलसल ये मौकफ बरकरार रखा है कि ये दौर जंग का नहीं है और कोई भी हल जंग के मैदान से नहीं निकलेगा। नेपाल में तबाहकुन अचानक सैलाब से मुतालिक बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय फॉरेंसिक टीम और टनल में बचाव टीम जमीनी सतह पर काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम इस वक्त काठमांडू में 2 लेबोरेटरियों में काम कर रही है और वो 1200 डीएनए नमूनों की जांच कर रही है। जनाब जायसवाल ने कहा कि 275 भारतीय शहरी लापता हैं, जिनमें वो 49 अफराद भी शामिल हैं जो चीन की जानिब लापता हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 169 भारतीय शहरियों को अब तक बचा लिया गया है।
2: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 275 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल के आवाम और हुकूमत के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने जल्द मदद का हाथ बढ़ाया और वो राहत इमदाद, बचाओ और तामीर नौ की कोशिशों में मदद जारी रखेगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि 7 तैयारों के जरिए अब तक 95 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका है और कुछ और इमदादी सामान जल्द भेजा जाएगा। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत चीन ताल्लुकात रफ्ता रफ्ता मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताल्लुकात के इस तरह रफ्ता रफ्ता मामूल बनाने और अवाम से अवाम के दरमियान रबते इंतहाई अहम हैं। इस महीने की 6 तारीख को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय हिस्से के वाचा में और कल चीन की जानिब दमई में पहली आला सीनियर मिलिट्री कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग के सिलसिले में सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि मगरबी सेक्टर में भी इसी तरह का तरीकेकार मौजूद है।
2: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह 3 रोजा श्रीलंका दौरे पर आज कोलंबो पहुंचे। उनके दौरे का मकसद दो तरफा दिफाही और बहरी ताउन को वसत देना है। बिंद्रा नाई के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर श्रीलंका के नायब वजीर दिफा अरुणा जया सीकरा और श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने जनाब सिंह का पुरजोश खैर मकदम किया। अपने दौरे में वजीर दिफा मजबूत दिफाही और बहरी साझेदारी समेत बाहमी तौर पर फायदेमंद मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के मकसद से श्रीलंका की क्यादत के साथ बातचीत करेंगे। जनाब सिंह अपने दौरे में कोलंबो में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। रवानगी से कबल अपने बयान में जनाब सिंह ने भारत की पड़ोस मुकदम पॉलिसी और महासागर विजन के तहत श्रीलंका को भारत के अहम साझेदारों में से एक करार दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस ने आज ये कहते हुए कि यूक्रेन जंग खत्म होने के लिए भारत की जानिब से अमन कोशिशों का वो खैर मकदम करता है, کہا کہ ماسکو کی حکمت عملی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کرنے کے نئی دلی کے موقف سے قریبی طور پر ہم آہنگ ہے۔ برکس سربراہ کانفرنس سے پہلے آج دوپہر نئی دلی میں ایک ورچوئل بریفنگ سے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے یہ بات کہی۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یوکرین لڑائی پر وہ بھارت کے موقف سے واقف ہیں اور کافی حد تک وہ ان کے خود کے موقف سے مطابقت رکھتا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کا پرامن حل چاہتا ہے اور روس اس سے اتفاق رکھتا ہے۔ جناب پیسکوو نے کہا کہ یہ یوکرین کے ساتھ جنگ کی صورتحال سے صدر پوتن کی جانب سے وزیراعظم مودی کو آگاہ کیے جانے کا بھی ایک موقع ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گجرات کے ایکتا نگر میں 22 ستمبر کو 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ایک بڑی پالیسی پہل کے تحت اطلاعات و نشریات کی وزارت نے قومی فلم ایوارڈز کی تقریب کو قومی راجدھانی سے پرے ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سال ایکتا نگر میں ہونے والی تقریب پورے بھارت سے سینما کی دنیا کے ہونہار افراد کو یکجا کرے گی، جس سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو فروغ ملے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: اس سال کے قومی فلم ایوارڈز مختلف زبانوں، اصناف اور سینما کی گوناگونیت کا جشن ہے۔ فلم آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم جبکہ فلم بھنگار کو بہترین غیر فیچر فلم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس دوران جیوری نے رام نامی کو بہترین ڈاکیومنٹری قرار دیا ہے۔ سرکردہ رول میں بہترین اداکار کا ایوارڈ فلم برہما یگم کے لیے مموتھی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو دیا۔

0: Kalimantan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंथन। आज का हमारा विषय बेहद गंभीर भी है और वह देश के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ भी, नशा मुक्त भारत, भारत का 3 वर्षीय एक्शन प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ अगले 3 वर्षों के लिए एक व्यापक रोड मैप सामने रखा है। इस योजना में ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई से लेकर अवैध ड्रग लैब को खत्म करने, फरार आरोपियों को भारत लाने, नशे की मांग कम करने और डी एडिक्शन सेवाओं को मजबूत करने तक कई पहल शामिल हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं SPYM यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार। मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: थैंक यू श्रेया जी।
2: डॉक्टर राजेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए अगले 3 वर्षों का एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार किया गया है, आप के तौर पर इस लक्ष्य को किस तरह देखते हैं और क्या 2029 तक नशा मुक्त भारत एक व्यवहारिक लक्ष्य है और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?
3: ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छी बात यह है कि इसको उन्होंने मिशन मोड में लिया है और जो जो इस पे कॉन्टूर्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है उन्होंने डाला है, से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, बाहर से जो क्रिमिनल्स हमारे जो ड्रग इंडिया में लेकर आते हैं उनको पकड़ के लाना है, ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट करना है, वॉलंटियर्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और ये अगर मिशन मोड में सारे मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स अगर जुड़ेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है नेक्स्ट 3 ईयर्स में पूरे देश को नशा मुक्त करना, मगर कंफर्टेबली अचीव हो सकता है, मगर 29 तक नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, चूंकि मैं पिछले लगभग 40 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूं, मगर एटलीस्ट एक मिशन मोड में काम तो शुरू हुआ और वो बहुत बड़ी चीज है
2: जी। इस एक्शन प्लान को 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताया गया है, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
3: देखिए, ये चारों इम्पोर्टेंट है, हम इसको कोई ये नहीं कह सकते ये नंबर 1 है या नंबर 2 है। नो, फॉर एग्जांपल अभी पिछले महीने में भारत सरकार ने एक बड़ा क्रिमिनल है बसोया जिसको दुबई से लाया गया, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग विद इन द कंट्री और बिटवीन कंट्रीज ये हो रहा है और इसमें काफी पॉजिटिव अब उसका रिजल्ट दिखने लग गया। विद इन द कंट्री जो जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग पुशर्स हैं, जो ड्रग कार्टेल्स हैं, उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है और काफी लोग अब इस धंधे से निकल रहे हैं जैसा हमें लग रहा है। अब इसका इम्पैक्ट तो समय पे ही मिलेगा। सो पहला जो है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, दूसरा इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं वो जो प्रीकर्सर एंड केमिकल ड्रग्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, जो ड्रग जो केमिकल ड्रग्स है, दो तरह के ड्रग होते हैं, एक होता है जो नेचुरल ड्रग होता है जैसे गांजा है, भांग है, अफीम है, कोकीन है, ये सब नेचुरल ड्रग है, इसको नार्कोटिक्स ड्रग कहा जाता है, और जो जो केमिकल ड्रग है उसको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो केमिकल ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विद इन द कंट्री वो अवेलेबल है, तो उसको अगर आप जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो बना रहे हैं केमिकल्स उसके ऊपर निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से ही कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ निकलते हैं जिससे जैसे फॉर एग्जांपल अफीम को प्रोसेस करने के लिए जिन केमिकल की जरूरत होती है वो भी हम ही बनाते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे मेथामफेटामिन टाइप के जो केमिकल ड्रग्स हैं उसको भी बनाने के लिए केमिकल्स हम ही बनाते हैं। तो प्रीकर्सर्स को भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है जिससे कि वो ड्रग नहीं बन पाए जो अभी बाजार में अवेलेबल है, और जो केमिकल ड्रग्स हैं वो भी नहीं बन पाए जो अभी नया ट्रेंड पिछले 4-5 सालों से शुरू हुआ है। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो यंग पॉपुलेशन है ये अब चूंकि ये स्टिमुलेंट टाइप का ड्रग है जो लोगों को अच्छा लगता है अगर इस तरह का ड्रग लेते हैं, फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, इसका इलाज भी मुश्किल है, जो केमिकल ड्रग्स हैं, जो मेथ टाइप के ड्रग्स हैं, एमडीएमए है, मगर ये ड्रग केमिकल ड्रग है और ये तेजी से फैल रहा है, तो इसके लैब्स को भी रोकने की जरूरत है और उसके ऊपर काफी कार्रवाई पिछले एक सालों में मैंने देखा है।
2: जी, जैसा कि हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो डिमांड और सप्लाई दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें समझ में आते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ सप्लाई रोकना काफी है? क्योंकि क्या भारत को अब ड्रग्स पकड़ने के साथ साथ अगर हम देखें तो ड्रग्स की मांग क्यों पैदा हो रही है, इस सवाल पर भी उतना ही गंभीरता से काम करने की जरूरत है?
3: देखिए, आपने सही बोला, ये डिमांड एंड सप्लाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सप्लाई है तो डिमांड जनरेट होता रहता है, और अगर सप्लाई कम हो रहा और डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाता है, तो फिर सप्लायर नए तरीके से मार्केट में आता है। नो, फॉर एग्जांपल, नार्कोटिक्स ड्रग की जगह अब जो केमिकल ड्रग्स आ रहा है, उसका कारण यही है कि नार्कोटिक्स ड्रग को सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, काफी उसके ऊपर रोकथाम है। जो केमिकल ड्रग्स है उसको बनाना आसान है, और केमिकल ड्रग चूंकि मार्केट में आ रहा है और डिमांड है, तो उसके लिए नया नया कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है। कभी हो सकता है सप्लाई रिडक्शन पे ज्यादा हमें सफलता मिल सकती है, और कभी हो सकता है डिमांड रिडक्शन पे ज्यादा सफलता मिलती है, बट दोनों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, और भारत सरकार ने, इसके अलग अलग मंत्रालयों ने इसके ऊपर काफी काम करना शुरू कर दिया है।
2: सिंथेटिक ड्रग्स और नए तरह के नशीले पदार्थ तेजी से चिंता का विषय बन चुके हैं। आपके अनुभव में युवाओं को इन पदार्थों से दूर रखने के लिए स्कूल, विश्वविद्यालय, परिवार और सरकार, इन तीनों स्तरों पर क्या काम करने के लिए आवश्यकता है? मतलब
3: देखिए, अच्छी बात यह है कि 99% बच्चे नशा नहीं करते हैं, और वो फैक्ट है, अलग अलग डेटा में वो दिखता भी है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अधिकतर बच्चे अब स्कूल में हैं, तो स्कूल बेस्ड अभी भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नवचेतना। इसमें लगभग 10 लाख मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन हो रहे हैं, और वो 10 लाख 20-20 टीचर्स को ट्रेन करने जा रहे हैं, और ये प्रोसेस शुरू हुआ है, और इसका भी इनिशिएटिव माननीय अमित शाह जी ने लिया था, और ये प्रोग्राम स्कूल बेस्ड है, टीचर लेड है, तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव होना चाहिए घरों के अंदर। परेशानी यह है कि अधिकतर माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बच्चा नशा करने लग गया या नशा में वो लिप्त हो रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो माँ बाप को भी सजग होने की जरूरत है।
2: सरकार ने देश में डी एडिक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाकर 1751 करने की बात कही है। आपके अनुसार इलाज और पुनर्वास को और प्रभावी बनाने के लिए किन किन स्तरों पर सरकार का फोकस जरूरी है?
3: ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक जो नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबल थे मेरे ख्याल से 500 के आसपास था, और देश बहुत बड़ा है, और एक जो भारत सरकार का आंकड़ा है जिसको एम्स ने स्टडी किया था, उसमें करीब 6 करोड़ लोग हैं जिनको आज इलाज की जरूरत है। तो ये अगर नंबर बढ़ा है 1000, जो भी आप नंबर बता रही है 751, अगर ये हो रहा तो ये सब वेरी पॉजिटिव स्टेप। समस्या दो है। पहली समस्या ये है कि लोग इलाज के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवारजन को ट्रीटमेंट तक नहीं लेके जाना चाहते हैं, और उसमें स्टिग्मा एक बहुत बड़ा कलंक, एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो सरकार को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए कि इस स्टिग्मा को एड्रेस करें, क्योंकि होता यह है कि अगर फादर को पता चला या मदर को पता चला कि मेरा बच्चा नशा लेता है, तो वो उसको छिपाते हैं। जब वो छिपाते हैं तो धीरे धीरे वो समस्या और बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है। और दूसरी, बाय द टाइम उनको पता चलता है कि हाँ अब इसको इलाज के ले जाने की जरूरत है, तब तक शायद वो बच्चा इलाज के लिए अब तैयार नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टिग्मा को घटाने की जरूरत है। दूसरा, जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स खुले हैं वहां पे जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट का 4 फेज होता है। पहला फेज जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन का फेज, तो उसमें परिवार और काउंसलर्स की भूमिका होती है, टीचर्स की भूमिका होती है कि आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ। दूसरा फेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्स का फेज। डिटॉक्स का मतलब जिसमें उसकी जो टूटन है, उसका जो विड्रॉल है, उसको मैनेज किया जाता है। तीसरा है रिहैबिलिटेशन का फेज। रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब है कि जब वो नशा करना शुरू किया था उसके पहले उसका जो लाइफस्टाइल था वो वापस लाइफस्टाइल उसको मिलना चाहिए और अटेंड करना चाहिए, तभी तो वो वापस सोसाइटी में और परिवार में रीइंटीग्रेट होगा। और चौथा उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी सपोर्ट, कि जब वो उसका इलाज हो गया, इलाज होने के बाद उसकी मदद करनी चाहिए कि वो रिलैप्स नहीं करे। तो इन तमाम चीजों के लिए जो सरकारी जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स बन रहे हैं उसमें जितने भी हर लेवल के जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, और अमित शाह जी ने अपने वो जो चौथा स्तंभ है क्षमता निर्माण है वो यही एग्जैक्टली, मतलब सप्लाई रिडक्शन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए और ड्रग ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो और मैं छोटी बात कहना चाहता हूं कि एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसको जो हमें दिख नहीं रहा है वो है बच्चों का पॉपुलेशन, जो बच्चे नशा करना शुरू कर दिया है, और महिलाओं का पॉपुलेशन। तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलाइज प्रोग्राम हो। स्पेशलाइज प्रोग्राम का मतलब है जो बच्चों का ट्रीटमेंट है वो एडल्ट के ट्रीटमेंट से बहुत डिफरेंट होता है और महिलाओं का ट्रीटमेंट, चूंकि वो महिलाएं निकलना नहीं चाहती और परिवार निकलने नहीं देता है कि छिपाता है, तो ये जरूरी है कि दोनों के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम हो।
2: जी, सरकार ने 1,00,000 नशा मुक्त मित्र बनाने का भी लक्ष्य अपने सामने रखा है, आप इस पहल को किस तरीके से देखते हैं, और नशा मुक्त मित्र जो ये अभियान है इसको जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ये किस तरह का योगदान दे सकता है?
3: देखिए, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि नशा आम बीमारियों से बहुत अलग है। और अधिकतर जो यंग बच्चे जब नशा करते हैं तो उसके संपर्क में कौन होता है? माँ बाप नहीं होते, टीचर नहीं होते हैं, उन्हीं के हम उम्र के लोग होते हैं। तो अगर वो हम उम्र वाले बच्चों को अगर हमने ट्रेन किया, उनको हमने ओरिएंट किया, एक प्रोग्राम है जिसको पीयर लेड इंटरवेंशन कहा जाता है, तो उसके माध्यम से अगर हम उन बच्चों तक पहुंचे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिन्होंने इनिशिएट किया है कि साहब अभी हम थोड़ा थोड़ा लेना हमने शुरू किया, तो ये जो 1,00,000 वॉलंटियर्स हैं, और ये 1,00,000 वॉलंटियर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। NSS है, NCC है, माई इंडिया है, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोग्राम भारत सरकार के चल रहे हैं उनके माध्यम से ये अचीवेबल है और ये होना भी चाहिए।
2: जी, अंत में डॉक्टर राजेश, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि हम अक्सर नशे की समस्या को केवल कानून व्यवस्था या स्वास्थ्य का मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परिवार, मानसिक सामाजिक परिस्थितियां, बेरोजगारी, साथियों का दबाव और सामाजिक वातावरण जैसे कई कारण भी हो सकते हैं। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में हो तो आपका सबसे पहला संदेश क्या होगा, और एक नशा मुक्त भारत बनाने में एक आम आदमी या आम नागरिक आज क्या भूमिका निभा सकता है?
3: बहुत लंबा सवाल है, संक्षेप में कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं बताऊं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिवार अपने बच्चों को जाने, उनसे बात करे। आजकल बच्चे परिवार के साथ नहीं बात करते हैं, वो रील से बात करते हैं। उन्होंने कुछ अगर सोशल मीडिया पे डाला और अगर उनको थम्सअप नहीं मिला तो वो निराश होते हैं, वो परेशान होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारा गेम डोपामिन का है। अगर उसको डोपामिन स्पोर्ट्स से मिल रहा है, डोपामिन उसको परिवार से बात करने में मिल रहा है, अपने दूसरे जो फ्रेंड्स उनसे बात करने में मिल रहा है, तो उसको इनकरेज करने की जरूरत है। तो ये सबसे काटने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल और परिवार दोनों बच्चों को समझे, बच्चों के स्वभाव को समझे, बच्चे के बदलते हुए जो मानसिक स्थितियां हैं उसको समझे और उनसे बात करे।
2: जी, तो डॉक्टर राजेश, आपने हमें बड़े नशा की समस्या को सिर्फ एक कानून के नजरिए से नहीं बल्कि रोकथाम, इलाज, पुनर्वास और समाज की भागीदारी, इन सभी पहलुओं से समझाया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू श्रेया जी।
1: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। समय है गजलों के कार्यक्रम महफिल का। कार्यक्रम महफिल में सुनवाते हैं ये पहली गजल पंकज उदास के स्वर में।

0: जनाब अब्दुल हमीद आदम साहब का एक
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंकज दास के स्वर में ये गज़ल, और अब सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में अगली गज़ल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में ये गजल, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम महफिल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवा रहे हैं गुलाम अली के स्वर में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम महफिल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला सुर आशा भोसले का, फिल्म उमराव जान से, बोल सैयार के और संगीत खय्याम का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म ये रात फिर ना आएगी का ये गाना। संगीतकार ओपी नैयर। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस अंतराल के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम सुरों के रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवा रहे हैं फिल्म सावन को आने दो का ये गीत, आवाज़ येसुदास की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में फिल्म उपकार का ये गीत, गीतकार इंदिवर। और अब सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत, बोल इंदिवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत। गीतकार इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के 3रे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai this evening.
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
2: The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be a new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities. The four-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from today till 11th September. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a three-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. Mr. Singh was warmly welcomed at Bandaranaike International Airport by Sri Lankan Deputy Minister of Defence Aruna Jayasekara and Indian High Commissioner to Sri Lanka Santosh Jha. During his visit, the Defence Minister will hold talks with the Sri Lanka's leadership on various issues to further strengthen bilateral ties in mutually beneficial areas, including a strong maritime and defence partnership. Russia today said that it welcomes any peace efforts by India to end the Ukraine conflict, noting that Moscow's strategy aligns closely with New Delhi's position for a resolution through dialogue and diplomacy. Kremlin spokesman Dmitry Peskov made the remarks while addressing media at a virtual briefing in New Delhi this afternoon ahead of the BRICS summit. Mr. Peskov said they know the position of India on the Ukrainian conflict and to a great extent it corresponds with their own position because they do want the solution to the Ukraine conflict by peaceful means and Russia is open for this process. He said Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin will hold bilateral talks on the sidelines of BRICS summit later this week. The government has approved strategic investment plans with an aggregate project outlay of over 735 crore rupees for ITI clusters in Rajasthan, Uttar Pradesh and Telangana. It includes 241 crore rupees investment plan for Rajasthan, over 240 crore rupees for Uttar Pradesh and 254 crore rupees investment plan for Telangana. It was approved during the 5th National Steering Committee NSC meeting of the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs PM Setu. India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura, Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Nagaland and Odisha tomorrow. IMD has said that thunderstorms accompanied with lightning and gusty Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. And India bagged 5 medals including 2 gold, 2 silver and 1 bronze on the penultimate day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today, with the men's teams winning the top honours. Reigning world champion Toman Kumar and Shyam Sundar Swamy clinched the gold medals in the men's compound team event with the dominant win. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।